तामा, पितल, स्टील, कांच, प्लास्टिक तथा किचन का सामान को होलसेल मूल्य में खुदरा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9850-1246 9850-1254 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ।

स्टडी एब्रोड जुनसुक विषय में उच्च शिक्षा का लगी अस्ट्रेलिया यूएसए यूके कैनेडा न्यूजीलैंड हजुर को गंतव्य विश्वासिलो र भरपर्दो शैक्षिक परामर्श केन्द्र बीएमडब्ल्यू एजुकेशनल कंसल्टेन्सी पोखरा संपर्क बीएमडब्ल्यू एजुकेशनल कंसल्टेन्सी पोखरा चार सिद्धार्थ चोक फोन नंबर 0161570736 9856320325 9806535480 साथ ही आईएसएफपीजी का कक्षा विशेषज्ञ टोली र गुणस्तरीय तालीम का साथ प्रदान गरिन्छ।

0: तामा, पितल, स्टील, कांच, प्लास्टिक तथा किचन का सामान को होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852510504 साथ ही कुकुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ।
1: हेलो क्रिस्पी, सुन न, घरमा चाहिने खाद्यान्नको सामान सकिएको छ, यी सम्पूर्ण सामान किन्न कता जाने होला?
2: किन यता उता गर्नु पर्यो? पोखरा 7 मासबारमा रहेको पीएसटी टेरसमा जाऊ न, त्यहाँ त गुणस्तरीय सामान सस्तो र सुफत मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: सम्पर्क पीएसटी ट्रेडर्स पोखरा 7 मासबार श्रीकृष्ण माविदेखि बुलाउँदी लेकसाइड जाने बाटोको बीचमा प्रोप्राइटर टेकराज पौडेल मोबाइल नम्बर 9860340362 9560334 खाद्यान्नका सम्पूर्ण सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाइन्छ, साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था।

0: जस्तो छैन यार।
1: शहर में भीड़ छ मान्छे अकेला, टेंशन गर्मी ठेलम ठेला, हर कोई जिंदगी से धकेला, सानो बाप मा ठूलो झमेला, ये

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरा।

0: अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 55 07 मनसरा तात चिकन बिरयानी पोखरा 8 जालपा रोड।
1: सफलता स्टूडियो टाइम

0: बाकीलाल स्पोर्ट्स बुद्ध विशाल बजार चिब्बे ढुंगा पोखरा सम्पूर्ण किसिम का खेलकूद का सामग्री होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिने ठाउँ विभिन्न देश का जर्सी सुपथ मूल्य में पाइन्छ आफूलाई मन पर्ने देश को जर्सी का लागि सम्झन होस् बाकीलाल स्पोर्ट्स प्रोप्राइटर मोहन कुंवर संपर्क 98 61 62 983 98 5 50 52 855 समझनुहोस् है बाकीलाल स्पोर्ट्स बुद्ध विशाल बजार
1: आयो है मासु ताजा ताजा मासु दोस्ती टू मिट सपमा।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 9705508 9755055007 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुर के सहर पोखरा में।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मनसरा 7 चिकन बिरयानी हजुर के सहर पोखरा।

0: おい。
1: ダンダラン。Promotion letter.
0: Congratulations.
1: Thank you.
2: Wow.
1: Baby, Bangalore.
0: I hope you said no.
1: No. मैं no क्यों बोलूँगी?
0: हाँ. मेरा क्या होगा? As in, हमारा क्या होगा?
1: बाबा, तुम्हारे हमारे की बात नहीं है. तुम्हें पता तो है ये promotion मुझे कितनी मुश्किल से मिली है. I have to go to Bangalore.
0: अगर तुमने decide कर लिया तो फिर मुझसे पूछने क्यों आई है?
1: Hello, मैं पूछने नहीं आई हूँ, मैं बताने आई हूँ. I don't have to ask you anything, और मैं जा रही हूँ Bangalore. Whatever.
0: Listen, baby.
1: Don't talk to me.

0: तुम बैंगलोर कब जा रही हो?
1: मैं बैंगलोर नहीं जा रही, बैंगलोर जाना कैंसिल।
0: तुम्हें फिर बैंगलोर में क्या करूँगा? बैंगलोर तो तुम जा रही हो।
1: मैं नहीं जा रही बैंगलोर, तुम भी नहीं जा रहे हो, कोई बैंगलोर नहीं जा रहा।
0: तुम लड़ रही हो।
1: लिसन, यू नॉट गोइंग टू बैंगलोर एंड डोंट ट्रबल मी नाउ। सुबह से रो रही हूँ मैं। और क्या, सुबह से रो जा रही हूँ।
0: अरे भी हर बार तो रो रही
1: हूँ। यू डोंट केयर अबाउट माय फीलिंग्स। यू आर नो हर्ट।
0: चलो हम लोग साथ में।
1: यू इंडियन, यू इंडियन।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 9705508 9705508 मलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरामा।

0: घर पे बहुत बोर हो रही
1: हूँ।
0: कहीं चले?
1: कहाँ?
0: कश्मीर?
1: इस महीने नहीं बाबा, बहुत बुकिंग है। अगले महीने?

0: मामी
1: ये आयशा सिगरेट पीती है।
0: मुझे पता है मां। अरे वो कभी कभार ऐसे ही।
1: पता है तुझे, तेरे रूम के दरवाजे बंद रखती है वो। इस घर के दरवाजे आज तक कभी भी बंद नहीं हुए। ये इस घर में नहीं चलेगा।
0: अरे तो मां लिखती है अंदर, दरवाजा खोल के लिखेगी क्या? उसका भी घर है ना। ऐसा करता हूं मैं, बोलता हूं।

0: देखिसके ब्रो
1: कहिले
0: मिल्दैछके ब्रो
2: राम्रोसँगले मिलाइदिए
0: राम्रोसँगले गाइदिए
1: हासे
0: मुच्छे

0: एउटा सानो मान्छेको चाहना।
1: डोनी डोन ए पापा एकिन चुडनो पापा।
0: अनि हामी सबैको चाहना रेडियो सफलता 103.4 मेगाहर्ज।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुर के शहर पोखरा।

0: বাকিলাল স্পোর্টস বুদ্ধ বিশাল বাজার চিপেডুঙ্গা পোখরা সম্পূর্ণ কিসিম কা খেলকুদ কা সামগ্রী হোলসেল তথা খুদ্রা বিক্রি গরিনে ছাও বিভিন্ন দেশ কা জার্সি হরু সুপথ মূল্য মা পাইন্ছ আপুলাই মন পনি দেশ কো জার্সি কা লাগি সঞ্জন হোস বাকিলাল স্পোর্টস প্রোপ্রাইটার মোহন কুয়ার সম্পর্ক 9816 65983 98 5 50 52 8 55 সম্ঝুনোস হই বাকিলাল স্পোর্টস বুদ্ধ বিশাল বাজার
1: হ্যালো
2: হাজার সঞ্চয় কষ্ট
3: ছ হাজারলাই
1: বরু তালিমিলা কাহ পঠাউনে হোলা রেডিওমা কান্তিপুর রুরাল ট্রেনিং ব্যারে শুনছু নি
4: বারিশ তা বার টেন্ডার সুশি মেকিং ইন্ডিয়ান কুকিং কুক ওয়েটার বেকারি হাউসকিপিং ফ্রন্ট অফিস লগায়তকা সম্পূর্ণ হোটেল সম্বন্ধী তালিম কালাগি
5: কান্তিপুর হোটেল ট্রেনিং সেন্টার
4: বর্ষৌ দেখি দেশ বিদেশ কা পাঁচ তারি হোটেল মা কার্যরত সেফ র ম্যানেজার দ্বারা তালিম দিনে বিদেশ মা মান্যতা প্রাপ্ত অন্তর্রাষ্ট্রীয় স্তর কো পাঠ্যক্রম
6: সাথে হোস্টেল কো ব্যবস্থা পনি রয়েকো ছ
5: তারে হোটেল মা ফিল্ড ভিজিট র ফিল্ড ট্রেনিং করাইনে সিটি ভিজিট দ্বারা স্কিল টেস্ট করাই সার্টিফিকেট দিইনে তপাই হামরো বিশ্বাস জিতন সফল
4: কান্তিপুর হোটেল ট্রেনিং সেন্টার মার্গ চুকলাডুঙ্গা ইউ এফ ওর থ্রি কমপ্লেক্স কো বিচ মা
7: ফোন নম্বর 061-5587-915
8: सामाजिक सञ्जालको अधिक प्रयोगले व्यक्तिमा एक्लोपन परिवारमा अविश्वास र कलहका साथै समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको छ
9: गलत एवं भ्रमपूर्ण सामग्रीका साथै अश्लील र नकारात्मक सामग्री पोस्ट र शेयर नगरौं
8: सामाजिक सञ्जाललाई नयाँ प्रविधि र विषयवस्तुको जानकारी लिने तथा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने माध्यमको रूपमा सदुपयोग गरौं
9: अरूको अश्लील फोटो तथा भिडियो खिचेर अपलोड गर्ने द्वन्द बढ़ाउने हिंसा फैलाउने र चरित्र हत्या गर्ने सामग्रीहरू नराखौं
8: अरूलाई होच्याउने निज देखाउने तथा तथ्य बंग्याई चरित्र हत्या गर्ने जस्ता कार्य दण्डनीय हुन्छ
9: यस्ता कार्य गर्नेलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार साइबर अपराधमा कानूनी कार्यवाही हुन्छ
8: सचेत बनाऊ
9: सामाजिक सञ्जाललाई सद्भाव सकारात्मक विचार र प्रेरणा फैलाउने माध्यम बनाऊ
8: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड
10: बेरोजगारलाई रोजगारी सेक्युरिटी गार्डको तालिम मार्फत स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा पनि राम्रो आमदानी
11: होइन के भन्छ यो रेडियोले तेल लगा त कान्छ
10: नेपाली सेना स्पेशल फोर्स रेन्जर तथा नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त अधिकारीद्वारा सञ्चालित दि गोर्खास रेन्जर सेक्युरिटी सर्भिस एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्राइभेट लिमिटेडमा सेक्युरिटी गार्डको तालिम लिनुहोस् दक्ष सेक्युरिटी गार्ड बनी रोजगारीको बाटो तय गर्नुहोस् दि गोर्खास रेन्जर सेक्युरिटी सर्भिस एन्ड प्राइभेट लिमिटेडले विक्रम सम्म 2071 हालसम्म तपाईँ हाम्रै उद्योग कल कारखाना होटेल रिसोर्ट बैंक तथा वित्तीय संस्था स्कूल तथा कलेजहरूमा आवश्यक पर्ने दक्ष तथा अनुभवी सेक्युरिटी गार्ड सप्लाई गर्दै आएको छ हामी एक महिनामै यहाँहरूलाई सेक्युरिटी गार्डमा दक्ष बनाउँछौ साथमा रोजगारीको पनि ग्यारेन्टी दिन्छौ साथै सबै प्रकारका मेला महोत्सव तथा ठूला ठूला कार्यक्रमहरूमा सुरक्षा प्रदान गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस् सम्पर्क दि गोर्खाज रेन्जर सेक्युरिटी सर्भिस एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड पोखरा 17 कारी पाटन हिमालयन आँखा अस्पताल नजिकै फोन नम्बर 061-574-225 98-560-2140 98-560-2127 र 98-038-2140 सम्झनुहोस् है सेक्युरिटी गार्डको तालिम प्रदान गर्ने अनि सेक्युरिटी गार्ड सप्लाई गर्ने विश्वासिलो अनि भरपर्दो एकमात्र संस्था दि गोर्खाज रेन्जर सेक्युरिटी सर्भिस एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड
12: विगतको 20 वर्षदेखि हजुरको सेवामा समर्पित
13: वेस्ट सल्फरले ल्यायो नयाँ जम्बो कम्बो अफर अब मात्र 12,000 एक वर्षको टिभी प्लस इन्टरनेट सर्भिस 19,500 दुई वर्षको टिभी प्लस इन्टरनेट सर्भिस
12: अब सबैको लागि वेब सर्भर भरपर्दो विश्वासिलो हाई स्पिड फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको हाई स्पिड फाइबर इन्टरनेट आइपिटिभी डिजिटल टिभी कर्पोरेट इन्टरनेट इन्ट्रानेट र डेटा सेन्टर सर्भिस आदि सेवाहरू लागि वेब सर्फर नेपाल अरु भन्दा फरक सबै भन्दा विश्वसनीय नेपाल भरि फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस
3: कन्ट्याक्ट 0615530500 0615589848
12: फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np

अब सफलता को साथ में नॉन स्टॉप म्यूजिक नॉन स्टॉप म्यूजिक तपाईलाई मन पर्ने गीत सुन्न को लागि फोन गर्नुहोस् 061-45-966 मा सुनौ मजाले नॉन स्टॉप म्यूजिक सफलता को साथ में

तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान को होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 5 0 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852910504 साथ ही कुकुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध।

0: रेडियो सफलता 103.4 मेगाहर्ज
1: सुन्न मन लायो
2: श्री राधा माधव समिति नेपाल श्यामा श्याम धाम थिमी को प्रस्तुति कार्यक्रम अध्यात्म सन्देश
3: अब हरेक हप्ताको आइतबार सोमबार मंगलबार बिहान 5:10 बजे रेडियो सफलता 103.4 मेगाहर्जमा पनि धार्मिक कार्यक्रम आध्यात्मिक सन्देश